0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से

0: अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत

0: बोलो पवन सुत हनुमान की
1: जय।
2: आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो तुसी सुन रहे हो भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

ठीक 10 बजे रूपक पेश किया जाएगा, रूपक भगत कबीर जी भयो कबीर। पेशकश प्रभजोत कौर, आलेख रविंदर सिंह वीर, वाचक बीरेंद्र सिंह। 10:30 बजे हिंदी गीतों का थोड़ी फरमाइश से आधारित लाइव फोन इन प्रोग्राम पेश करांगे हैलो फरमाइश। 11:05 से पंजाबी गीतों का थोड़ी ही फरमाइश से आधारित वट्सएप मैसेज बेस्ड प्रोग्राम होएगा धमक जलंधर पैंदी। 12:05 से परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े पेश किया जाएगा। अज के इस प्रोग्राम च झांजरां दे बोर खास सिलसिला होएगा, फरमाइशी गीतों का यह प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा 1:15 फौजी वीरां लई। ढाई बजे रंगली धरती प्रोग्राम च आए दे साडे कलाकार होणगे सुभाष चंद्र। बाद दोपहर 4:02 ते खेड संसार प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। 4:30 बजे उस तुहानूं श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलांगे, जिथों तुसीं शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। 5:30 बजे साडा रोज़ाना प्रोग्राम होएगा गुरबाणी विचार। 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम च कम दियां गल्लां अज दे मंडियां दे भाव तों बाद डॉक्टर बिंदू बरसाती पानी दी संभाल बारे जानकारी।

0: ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। 7:40 'ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸੋਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸ਼ਲੋਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤਾ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਜੋਸ਼ੀ। 7:50 'ਤੇ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲਮਹੇ। 8:00 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ, 8:15 ਸੁਰਸਰਿਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੰਸ। ਰਾਤ 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ, 9:30 ਵਿਗਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 10:00 ਸੰਗੀਤ ਕਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6:55 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਏਐਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚਕਹ ਦਿਵਯਾਨੰਦ ਝਾ। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथि रूपेण उपस्थितः भविष्यति। 15-2000 वर्षात् अनन्तरं इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारंभं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः 4000+ सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य 14 जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामी मास पर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवा विस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमंत्री अमित शाहः गतवासरे मादक द्रव्याणि विरुध्य संयुक्त संघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादक द्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रिय सुरक्षायै, सामाजिक स्थिरतायै, आर्थिक हिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिक नेतृन् यूनः मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्य विषयक संयोजन केन्द्रस्य 10th शीर्षस्तरीय सभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
2: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: उत्तर प्रदेश रक्षिबलिना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रति

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्रीय न्यूज़ हेडलाइंस पेश ने मुख्य खबरां। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे संबंधी गबन मामले च 8 लोगों नू गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत मुहिम जन भागीदारी तो प्रेरित एक लोक लहर बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली च नारको कोआर्डीनेशन सेंटर की 10वीं उच्च पदरी मीटिंग च बोलदिया नशे खिलाफ एकजुट जंग का सद्दा दिता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिणी कोरिया के विदेश मंत्री नाल दुवाले संबंधों नू मजबूत करने लिए व्यापक विचार वटांदरा किया है। पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम डिवीजन ने पिछले एक साल दौरान साइबर धोखाधड़ी नाल जुड़े 63,749 बैंक खातों से रोक ला दिती है। सूबे भर च जलंधर कपूरथला होशियारपुर धोखाधड़ी च सब तो वध प्रभावित जिले ने। पंजाब दे महिला ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने एक विशेष सम्मेलन दौरान बच्चों के सर्वपक्षी विकास लई छोटे कदम वड्डा विकास मुहिम दी कीती शुरुआत। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गैर कानूनी ते देश विरोधी गतिविधियां च शामिल होण दे इल्जाम च 3 व्यक्तियों नू कीता गिरफ्तार। पंजाब दे सारे सरकारी दफ्तरां ते संस्थावां दे समें नू 1 जुलाई तो पहलां वांग सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे तक बहाल कर दिता गया है। भारत ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप च सोने दे 7 तमगियां नाल तमगा सूची विच चोटी ते रहा है। चंडीगढ़ 3री एशियन रिले चैंपियनशिप 2027 करवाउण लई तैयार। पंजाब दे राजपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चैंपियनशिप फ्लैग हासिल कीता। ये सन न्यूज़ हेडलाइंस यानी मुख्य खबरां आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्रे।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक।

0: वाकई जी, ये तो गल सच्ची है कि वक्तों बेवक्त होया तो फिर रूप तेरे ते सदा नहीं रहना चनी है। लो जी, कोल बैठिया रब पछाणिया नहीं, रिहा करदा पहुँच भगवान तकर, रिहा पूजदा पत्थरां मूरतां नूं, लोड़ बंदे नूं सीगी इनसान तकर। सारी जिंदगी हाकमां झक मारी ते कदम एक नहीं गया ज्ञान तकर, ते लखां कोहां दा पहुँच गया वल पा के, ते सफ़र घरों सी सारा शमशान तकर। जिंदगी छोटी जी है, कदी कदी लगता कि इन्नी कु छोटी है कि इहदे विच असी बहुत सारे फलसफे अखों परोखे करी जाने, बहुत सारिया जिम्मेवारियां जिहड़ियां ने वह असी इधरों उधर करी जाने। कहने का मतलब यह है कि हुण जे असी नैतिक कदरां कीमतां की गल करिए, फिर अपनी सेहत की गल करिए, सेहत वास्ते बंदा कॉन्शियस तो हुंदा है, पर किस तरीके दे नाल हुंदा है, किवें होना चाहिए है, किहो जिहे उहदे मन दे विच सवाल ने, की खाना चाहिए की नहीं खाना चाहिए, मौसम किहो जिहा। डॉक्टर सुरेंद्र जगत जी ने, जिहड़े कि रिटायर्ड SMO ने, ते नाल 5 साल दी उहनां दी सर्विस होर भी है, ते फिर दुबारा वह ज्वाइन कर रहे हैं, ते लोकां दी सेवा वास्ते तत्पर ने। तो लो आपां उहनां दे नाल गलबात करदे हां, जानकारी लवांगे। डॉक्टर साहब, तुहाडा बहुत स्वागत है जी। हेलो हेलो मैं लगता कि डॉक्टर साहब की आवाज़ जिहड़ी हैगी है वह नहीं आ रही, तो हुण आपां ज़रिया जिहड़ा हैगा वह दूसरा बनाउण की कोशिश करांगे, पर फिर भी हाँ जी, डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है जी तुहाडा।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद साहब जी साहब।
0: हाँ जी डॉक्टर साहब, गल इदा कि मौसम बदल रहा
1: जी,
0: बदलता होया मौसम तो बदलते हुए लोग बड़ी तकलीफ देंगे आ तो की खाण पीण होना चाहिए जी, बच्चे बजुर्ग महिलावां दा सीजनल वेरिएशन आ रही हैं, सलाह दिओ जी साढ़े सुनने वाले।
1: पहला तो मैं तुहाडा धन्नवाद करदा, स्रोतियां दा स्वागत करदा सारिया दा। जिदा सौंधी साहब ने दस्सिया मौसम बड़ा बदल रहा, अगे बरसाती मौसम आने वाला हैगा, मच्छर वगैरा हो जाता हैगा, जा मक्की वगैरा ज्यादा हो जाती है, तो इस करके साडा उहना वख वख होने वाली बिमारियां जिहड़ियां, जिदा कि मक्खी साडे खाने नूं खराब करदी आ, उहना साडा टट्टियां उल्टियां लग जांदियां, बुखार हो जांदा आ, ते इह तों इहदे वास्ते सानूं इही

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਵਜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। अमूल

0: इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध

0: उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे की प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई

मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। महक पंजाब दी इस प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत। आओ सब तो पहला सुनते हैं मोहम्मद रफी ते दिलराज कौर दियां आवाज़ां च माही मुंडा फिल्म दा एक गीत।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो तुसी सुन रहे हो फिल्म संगीत। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, राजा हिंदुस्तानी दाई गीत, आवाज़ा उदित नारायण ते साथियां दियां

साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।

0: मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 135वीं कड़ी
1: हुणे तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम सुन रहे सी फिल्म म्यूजिक मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। आ हुण सुनदे आ स्रोतियां दे खतां ते आधारित प्रोग्राम तुहाडी चिट्ठी मिली।
2: तुहाडी चिट्ठी मिली प्रोग्राम लैके मैं सोहन कुमार हाजर
3: ते मैं प्रभजोत भी हाजिर जी।
2: बहुत बहुत स्वागत है मैडम तुहाडा भी इस प्रोग्राम दे विच जी। साडे स्रोतियां दा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है जी अज दे इस प्रोग्राम च।
3: बिल्कुल सोहन जी नमस्कार ते सुनन वालियां नूं भी नमस्कार।
2: तुहानूं भी बहुत बहुत नमस्कार मैडम। अज मैं देख रहा कि चिट्ठियां भी ने तुहाडे हत्थ विच और कुछ खत भी ने।
3: बिल्कुल जी ईमेल भी ने मेरे कोल।
2: यह सिलसिला शुरू करने तो पहले एक थोड़ी जी गल्लां कर लीए। मौसम जिस तरह चल रहा है।
3: अच्छा
2: गर्मी पै रही है कदे बरसात हो रही है बारिशां भी पै रही ने इहदे नाल की है कि मौसम दे विच जिहड़ी इन्नी तब्दीली आती है टैंपरेचर दे विच गिरावट आती है कदे बहुत ज़्यादा वध जांदा है सेहत दे उपर असर पैंदा।
3: बिल्कुल जी और जदों असी कदी कदी एसी चो निकल के बाहर जाने
2: जी
3: ते उस वेले भी साड़ी बॉडी जड़ी है वो चल नहीं पाती और बहुत सारिया प्रॉब्लम्स जड़िया ने वो शुरू हो जाती।
2: गर्म सर्द हो जाता है उहदे नाल गर्मी दी रुत्त विच जुकाम लग जाता है।
3: बिल्कुल जी और बरसातां दा मौसम जड़ा है वो
2: शुरू होने वाला बिल्कुल
3: और बरसातां किते किते हो भी रही है बारिश हो भी रही है
2: जी, जी।
3: और इस करके थोड़ा बहुत ख्याल जड़ा है अपना रखना चाहिए।
2: अपना जरूर ख्याल रखना चाहिए है और जदों ये जुकाम लगता है असीं जुकाम की दवाई लैंदे आ उहदे नाल की हुंदा है जुकाम अंदर छाती जम जाती है।
3: बिल्कुल जी और
2: खांसी लग जाती है और कई तरह की समस्यावां शुरू हो जाती है।

0: और सुन जी, छुट्टियां खत्म हो रही ने
1: जी जी
0: ते स्कूल खुल रहे ने,
1: जी
0: ते जेडे साडे अध्यापक ने उन्हां ने भी स्कूल जाना है ते
1: जी
0: बच्चियां
1: जी
0: ने भी स्कूल जाना है।
1: जी
0: और जदों स्कूल जाना है बच्चियां ने, उदों खास ख्याल रखना चाहिदा है।
1: बच्चे छोटे ने, उन्हां नूं इस चीज़ दा खास ख्याल, उन्हां दे
0: जी
1: पेरेंट्स नूं, उन्हां दे माता पिता नूं इस गल दा ध्यान रखना चाहिए है कि बच्चों की मौसम दे जिहड़ी अपना सख्ती हुंदी है
0: जी
1: उस तो बचा के रखा जाए।
0: बिल्कुल जी। और अध्यापकों ने भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि 1 महीने की छुट्टियां जड़ियां ने वो कट के ते अपने स्कूलों नू जा रहे ने।
1: हुण तक लगता कि बच्चे ने स्कूल का काम तो जो छुट्टियों के विच करन नू
0: जी
1: मिलता है वह कर लिया होएगा।
0: बिल्कुल, करके ही जानगे जी,
1: जी जी जी
0: क्योंकि पेरेंट्स भी पूरा जोर लगाते हैं कि अपना होमवर्क जिहड़ा खत्म करके जाओ।
1: जी
0: और जे कितने कितने होमवर्क ना भी होया हो
1: नहीं
0: तो बहुत ज़्यादा सख्ती जिहड़ी है वो टीचर्स नू नहीं वरतनी
1: वरतनी
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: जी
1: और बच्चे देखो छुट्टियों के विच कई तरह दे बच्चों ने आसा लाइया होंदिया ने कि इत्थे
0: हाँ
1: घूमन जावांगे, बहुत सारे बच्चे जाते भी ने ते आपस के विच बच्चों नू जिहड़े तजर्बे हुए ने छुट्टियों के विच जिथे
0: हाँ
1: जिथे गए ने जिहड़ी जिहड़ी थावां देखियां ने
0: जी।
1: उन्हां बारे जरूर अपने साथियों नाल जानकारी शेयर करनी चाहिए।
0: और देखो जी, मैं तो ये कहांगी कि कुछ कुछ लिखना भी चाहिए है,
1: जी
0: क्योंकि जिहड़ा ये टाइम हुंदा है जदों तुसी इहदे च लिखना शुरू कर देंदे हो,
1: जी
0: अपने अध्यापक नू दिखांदे हो, तो फिर तुसी बहुत वधिया लिखारी बन सकते हो।
1: बच्चे दी रचनाशीलता वधदी है, नाल
0: हाँ बिल्कुल
1: बच्चे
0: जी।
1: नू अपनी गल कहण दा एक हुनर विकसित हुंदा है और
0: जी
1: जिहड़ा उस दी सारी उम्र सहायता करदा है।
0: बिल्कुल जी। सो असी इस उम्मीद दे नाल के अध्यापक भी उन्हां दी मदद करनगे ते
1: जी
0: बच्चे भी अध्यापक दी मदद
1: और
0: करनगे।
1: बदल रहे जिहड़े मौसम दे विच उतार चढ़ा आ रहे ने इहदे विच सारे साडे स्रोते अपना ते अपने बच्चों का सारे का ख्याल रखणगे। ते करिए जी सिलसिला शुरू फिर चिट्ठियां दा।
0: जी बिल्कुल। ते ए पहला खाता है मेरे कोल पिंड चतरा, तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर तो।
1: जी
0: जगजीत सिंह चतरा, टहल सिंह, प्रेम भूषण गुप्ता, बूटा सिंह, अजीत सोहता, जीत सिंह पैंच, गुरसेवक सिंह, कुलदीप सिंह, हरनेक सिंह, गुरचैन, सुखचैन ते लिखारी सभा दे सारे मैंबर
1: वाह
0: कहिंदे जी प्यार भरी सति श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी।
0: 13/6 नूं कहिंदी अपनी चिट्ठी दा जवाब सुनिया, साढ़े सारे ही मैंबर जिहड़े लिखारी सभा दे ने बहुत ज़्यादा खुश होए,
1: जी
0: कहिंदे तुसीं बहुत वधिया प्रोग्राम जिहड़ा है वो पेश करदे हो और सारे सिलसिले तुहाडे बहुत वधिया चलदे ने।
1: जी
0: ते कहिंदे कि आप जो किसी स्वार्थ तो बिना उपर उठ के सेवा कर रहे हो, ये आकाशवाणी दे सारे मैंबरां नूं वधाई दिंदे ने जी।
1: देखो जी ये थोड़ा प्यार है जिहड़ा सानू वक्ख वक्ख तरहां दे प्रोग्राम पेश करन वास्ते उत्साहित करदा है और साडे सारे साथी सारे ही प्रोग्राम पेशकर्ता बड़े ही तनदेही दे नाल प्रोग्राम तैयार करदे ने। तुसीं उहनां नूं पसंद करदे हो, इस दे नाल साडी मेहनत सफल हुंदी है।
0: बिल्कुल जी। इसे तरह के इन्हों के दो खत होर ने, उहदे
1: जी
0: विच भी इन्हां ने यही लिखिया है
1: जी
0: कि असी सारे जाने साथ च बैठ के जो
1: जी
0: प्रोग्राम सुनते हैं।
1: हाँ ये अगे भी लिखते हैं कि
0: हाँ
1: जो भी असी कोई अपने घर में बैठ के भी प्रोग्राम सुनता है तो असी जो भी इकट्ठे होंगे लिखारी सभा के जिन्हें भी इन्हें पिंड के मैंबर ने
0: जी
1: जो भी वो इकट्ठे होंगे ने तो प्रोग्रामों बारे रेडियो से जो प्रसारित किए गए प्रोग्राम ने उन्होंने बारे आपस में चर्चा करते हैं कि
0: जी
1: वह फलाना प्रोग्राम सुनिया वो गल कही गई सी तो आपस के जरा विचार वटांदरा भी करते हैं और जानकारी का तबादला भी करते हैं। सानू उम्मीद है कि जिहड़े लोग जिन्होंने प्रोग्राम नहीं सुनिया हुंदा हो तां उन्हां तक भी वो जानकारी पहुँचती है। इन्हां दा बहुत वधिया उपराला है, बहुत सारे लोग तो चलो रेडियो सुनते हैं जिहड़े लोग नहीं सुनते उन्हां तक भी ये रेडियो दे प्रोग्रामां दे बारे विच जानकारी पहुँचाते हैं।
0: बिल्कुल जी। ते नाले नाले ये साडे लई अरदास भी कर रहे ने
1: जी
0: कि सानू तंदरुस्तियां बख्शन जिन्ने भी सारे प्रोग्राम पेश करदे ने।
1: जी साडे वल्लों भी परमात्मा अगे यही अरदास है कि जिन्ने भी साडे स्रोते ने जिन्ने भी साडे प्रोग्राम सुनदे ने वो सारे ही तंदुरुस्त रहन, खुश रहन ते सेहतयाब रहन।
0: सुनील जोशी, पंखू अते नीतू भारद्वाज तलवाड़ा हाजीपुर तो लिख रहे ने।
1: जी
0: इन्हां दा खत भी है दी, एक लंबा सारा खत भी है इन्हां दा।
1: जी की लिखा है इन्होंने।
0: इन्हां ने लिखा है कि तुहाड़ी चिट्ठी मिली प्रोग्राम पेश करन वाले प्रस्तुतकर्ता नूं प्यार भरी सति श्री अकाल, नमस्कार। आकाशवाणी दे 90 साल पूरे होण, आकाशवाणी वालों विशेष प्रोग्राम पेश किए गए।
1: जी
0: आकाशवाणी दी उपयोगिता, महत्व ते समाज विच बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए ते मंतव नूं उजागर किया।
1: जी
0: ज्ञान, मनोरंजन ते सिक्ख्या दा प्रसार करदा है आकाशवाणी। हर वर्ग लई प्रोग्राम पेश किए जांदे ने। हर वर्ग दा म्यार, लहजा, स्वर, उच्चारण बहुत ही सटीक, उत्तम ते उच्च कोटी दा हुंदा है।
1: जी
0: कहिंदे आकाशवाणी दी यात्रा अनंत है, भारतीय सभ्यता विरासत दी संभाल कर रही है आकाशवाणी।
1: जी
0: आकाशवाणी ने समय दे नाल हर खेत्र विच बदलाव कीता है,
1: जी
0: जिस नाल उपयोगित कहिंदे सानू जानकारियां मिलदियां ने।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स।

0: एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। पेश कर रहे हैं रूपक पयो कबीर कबीर। इस खास पेशकश नू आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल नाल आकाशवाणी दे बठिंडा ते पटियाला केंद्रां तो भी प्रसारित किया जा रहा है।
1: श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंग 1367 उपर सलोक भगत कबीर जीओ दे सिरलेख हेठ 62वें सलोक दे रूप विच भगत कबीर जी दा फरमान है। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किच हरि किया पयो कबीर कबीर। सचमुच गुरबाणी दियां इन्हां पंक्तियां दे दर्शन करदे होए जदों अर्थां नूं वाचदे हां ओ प्रभु दी किरपा नूं ही सर्वोच मनदे होए आख रहे ने मेरी तां कोई हैसियत ही नहीं है, इह तां किरपा उस मालक दी ही वरत रही है, पर नाम उन्हां दा हो रहा है, भाव लोग कबीर कबीर आख रहे ने। इस विच कोई अथकथनी भी नहीं है कि अज भगत कबीर जी दी भारती इतिहास अंदर एक वक्री पहचान है। उन्हां दी विलक्षण ते संघर्षमई जिंदगी नूं देखते हुए अज भी हर कोई धन कबीर ही आख रहा है। उन्हां दे बहुमुल्ले विचारां दा सत्कार अज समूह धर्मां दे अंदर बिना किसी भेदभाव दे बहुत ही श्रद्धा ते प्रेम भावना नाल कीता जांदा है। भगत कबीर जी नूं भगतां विचों श्रोमणी भगत भी कहा जांदा है। उस मालक दी याद विच अपने मुखार बिंद तो जद भी उन्होंने कोई बचन उचारे तां उह रब्बी बाणी दे रूप दे विच ब्रह्म दा बोल हो निबड़े। उन्होंने गुरु शब्द दे रूप विच प्रवान करदे हुए अज भी समुचा संसार मत्था टेकता है, नतमस्तक हुंदा है, सत्कार भेंट करता है।

0: आप जी दी इनकलाबी सोच ने धरती ते पसरी बिपर दी रीत नू करारी चोट मारी, सफलतापूर्वक उस नू नकारिया। लड़ाई विचारां दी लड़दे ने ते हर हालत विच भारू भी साबित हुंदे ने। जिस मौत तो इंसान डरदा है, भगत कबीर जी उस चों परम आनंद की प्राप्ति दसते हुए फरमान करते ने, कबीर जिस मरने ते जग डर है, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। अज भी समुचे संसार विच संगतां गुरबाणी दे प्रवाह अंदर भगत कबीर जी दे सलोक एकागरचित हो के बड़े प्यार दे नाल सरवण करदियां ने। इन्हां सलोकां अंदर जिंदगी दे हर फलसफे दा बखूबी चित्रण किया गया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे पंजाबी विभाग दे प्रोफेसर ते मुखी डॉक्टर मनजिंदर सिंह कहिंदे ने,
1: उन्हां दी दार्शनिकता बारे आपां गल करिए तां उन्हां दी फिलोसफी दे बारे बहुत महान साडे समाज शास्त्री ने डॉक्टर जे पी एस ओबराय

0: मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी बठिंडा, आकाशवाणी पटियाला, विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर का मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात की 135वीं कड़ी।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनू दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। हैलो फरमाइश लाइफ ऑन इन प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत। 0181-2342-173 ए फोन नंबर साडा, तो जरूर इस फोन नंबर नूं मिला के इस प्रोग्राम दा हिस्सा बन सकदे हो। तुसीं ते अपनी पसंद दा कोई भी हिंदी गीत सुनना चाहुंदे हो ते जरूर सुनो।

0: 135 मीकड़ी।
1: एक दोस्त पहुंचे ने, आओ उन्हां नाल गल करते हैं। हेलो हेलो हेलो दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी।
2: मैं रामनाथ बोलना सर।
1: हाँ जी रामनाथ जी, की हाल चाल
2: श्री फतेहगढ़ साहब में?
1: श्री फतेहगढ़ साहब
2: जी।
1: जी जी गीत दस दियो अपना, केड़ा सुनना तुसी?
2: गीत तो सुना दी, हम किसी का काम काम नहीं फैलना, कोई भी सुना दी।
1: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोस्त फोन करने के लिए।
2: सत श्री अकाल जी।
1: सो इसे ही गीत दे नाल इस प्रोग्राम का वक्त इत्थे ही खत्म हुंदा है। इजाज़त दियो, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और

0: दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रोजेक्ट हॉकाई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैनात की गई हैं। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व कप विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। ग्रुप एच में काबो वेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां जी प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। इस प्रोग्राम च अपनी फरमाइशां भेजण लई व्हाट्सएप नंबर नोट करो जी 9465560 77 ते टाइप करो जी अपने मनपसंद गीतां दे बोल, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम ते सानू व्हाट्सएप राहीं भेज दिओ जी। शुरू करदे हां प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

प्रोग्राम चल रहा है जी तमक जलंधर पैंदी। फरमाइश अगली सानू भेज रहे जी व्हाट्सएप राही मैसेज करके। मुल्लापुर तों राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम जैन, अभिषेक जैन, आशीष खुराना, हर्ष धीर, मनजिंदर संधू, जशनप्रीत संधू, बेबी संधू ते इना दा सारा परिवार फरमाइश कर रहे जी किसी भी पंजाबी गीत शामिल कर लिया जाए। अगली फरमाइश सानू भेज रहे जी जिला फाजिलका पंजाब तों मदन लाल बाटू, भाग्यवती, योगेश कुमार, ज्योति, संगीता, पारुल, कैरवी, सागर, गगनदीप ते इन्हां दे बहुत सारे साथी फरमाइश कर रहे ने जी गुरदास मान दी आवाज़ विच कोई भी गीत सुना दिता जावे। अगली फरमाइश आ रही है जी सानू हर्षित मध्य प्रदेश तो फरमाइश भेज रहे ने जी, ये भी कह रहे ने कोई भी पंजाबी गीत सुना दिता जावे। अगली फरमाइश आ रही है जी सानू बाजवा कलोनी गुरदासपुर प्रीतम चंद होना तो, ये फरमाइश कर रहे ने जी गुरदास मान की आवाज़ विच कोई भी गीत सुना दिता जावे। आओ इन्हां सारे दी रली मिली फरमाइश ते सुनते हाँ गुरदास मान की आवाज़ विच ये गीत।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंती। इस प्रोग्राम च अपनिया फरमाइशा भेजने लिए वट्सअप नंबर नोट करो जी 9465 56 77 तो टाइप करो जी अपने मनपसंद गीतों के बोल अपना नाम तो अपने शहर का नाम तो सानू वट्सएप राही छेती छेती भेज दो जी ताकि असी तुहाडियां फरमाइशा पूरियां कर दईए। आओ जी अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने रमेश बिल्ला चावला पिंड ते डाकखाना खुईयां सरवर तो तहसील अबोहर ज़िला फाजिलका तो भेज रहे ने आस्था जयश्री संतोष चावला हेमंत दीपक रमेश चावला राइजल हेजल विहान चावला रीजू बब्बू विहू चावला ते इना दा सारा ही चावला परिवार फरमाइश कर रहे ने कोई भी पंजाबी गीत सुना दिता जाए। अगली फरमाइश भेज रहे ने जी ज़िला फाजिलका पिंड बाजीदपुर तो भोला बलदेव सिंह ये फरमाइश कर रहे ने जी गुरु रंधावा की आवाज़ में कोई भी गीत सुना दिता जाए। अगली फरमाइश भेज रहे ने सुखवीर सिंह कोमलप्रीत कौर रोमनप्रीत सिंह पिंड छालजी जिला संगरूर तो अगली फरमाइश भेज रहे ने जी दर्शन सिंह अवतार सिंह जबरजंग सिंह चीमा पिंड अलूना म्याना तहसील पायल जिला लुधियाना तो फरमाइश कर रहे ने जी अमरिंदर गिल की आवाज़ में कोई भी गीत सुना दिता जाए। आओ इन्होंने सारे की रली मिली फरमाइश से सुनते हाँ अमरिंदर गिल की आवाज़ में यह गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

प्रोग्राम चल रहा है जी धमाक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम की अगली फरमाइश भेजे ने कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। फरमाइश कर रहे ने जी कोई भी पंजाबी गीत सुना दिता जाए। अगली फरमाइश भेज रहे ने जी यूपी तो बबली अंजान, टिल्लू राजा, सूरज कश्यप, गीता कश्यप। गीत नहीं लिखा है जी किहड़ा सुनना चाहते ने। अगली फरमाइश भेज रहे ने पिंड चानन वाला जिला फाजिलका तो हरी टेलर, पुष्पा, ममता, डॉक्टर महेंद्र, मदन लाल टेलर। ये कह रहे ने कोई भी पंजाबी गीत सुना दिता जाए। अगली फरमाइश आ रही है जी सानू फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांदा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांदा, जी एस रामगढ़िया। फरमाइश कर रहे ने जी दलजीत दोसांझ की आवाज़ में कोई भी गीत सुना दिता जाए। आओ इन्हां सारिआं दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हाँ दलजीत दोसांझ की आवाज़ में ये गीत।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर अगर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है।

0: व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 12:05 हो रहे ने। आओ सुनते हाँ पारिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: जी अगला गीत जिहड़ा अपने स्रोते की नज़र कर रहे हैं जी, दलजीत दोसांझ उन्हां दी आवाज़ दे विच, ते उस दे लई फरमाइश आई है जी, अजीत नगर मलोड़ तो छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर ते उन्हां दी लाडली पोती रौनकदीप कौर। कनेरा महला तो फरमाइश भेज रहे ने पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, हार्दिक, निहारिका ते वंश बत्ता। ते इसे गीत नूं सुनना चाहुंदे ने करणवीर हाउस पूचो कैंचियां तो प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन कुलदीप, एकम ते दमन ते उन्हां दे नाल अभिजोत।
1: और फतेहगढ़ साहिब पिंड अतापुर तो आए ने जी रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह ते सहजप्रीत कौर, सेखो कलोनी समाणा तो नवदीप गोयल, मनप्रीत गोयल ते पूरा गोयल परिवार, और नहर किनारे ढाणी फतेह वाली तो सानू ठंडियां ठंडियां हवावां नाल नाल भेजियां ने जी राम सिंह रपाल, खुशदीप कौर रपाल ते नसीब कौर रपाल हुणा ने, और इन्हां नू सुनावांगे जी इन्हां दी ही फरमाइश ते दिलजीत तो सांझ दा एक गीत।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल।

0: हेलो
1: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: जी, गीत संगीत का सिलसिला चल रहा है झांजरा के बोर ते जड़ियां साड़ियां भैणां ना प्रीति, ये नाल दे नाल कम कर रही ने ते नाल दे नाल गीत संगीत सुन रही ने। वैसे कम इतना सुखाला जा सौखा जा हो जाता है।
4: बिल्कुल जी, और फिर उदों होर भी सुखाला लगता है जदों सानू कोई गीत इहोजा करनी पैंदा ना जिहड़ा सानू भी बड़ा पसंद हुंदा है, ते उहदे नाल नाल फिर असीं आप भी गुनगुनाउण लग पैंदे आ। सो इस लई कहा जांदा है कि संगीत जिहड़ा है ना उह सानू मन दा सकून भी दिंदा है, खुशी भी दिंदा है और तनाव तो मुक्त भी करता है।
3: जो कि बहुत जरूरी है तनाव तो मुक्त होना, क्योंकि अजकल असीं देखते हाँ कि बहुत सारे लोग बिना वजह तो भी प्रीति कई बहुत ज़्यादा तनाव लेंदे ने और कई बारी वजह भी हुंदी है तनाव लैण दी। सो गीत संगीत दे नाल जुड़े रह के असीं इसनूं घटा सकते हैं।
4: बिल्कुल जी, ते अगला गीत अपने श्रोतिया की नज़र करते हैं जिसकी फरमाइश सानूं भेजी है मक्खू तो आर के बजाज, बिल्ला बजाज ते मनु बजाज उन्होंने, और ज़िला लुधियाना तो अपनी फरमाइश भेज रहे ने रजेश जैन, अरुणा जैन, अभिषेक जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन ते नगीना जैन, ते मुल्लापुर मंडी तो ही अपनी फरमाइश भेज रहे ने कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन, दीपक जैन, ते अहमदगढ़ तो अपनी फरमाइश भेज रहे ने जी सानू मंडी अहमदगढ़ तो बिट्टू राजा, नरेंद्र शर्मा, सविता शर्मा ते पुष्कर शर्मा
3: जी। और ये सारे कहिंदे जी सानू सुनिधि चौहान का कोई गीत सुना दिओ, और इस गीत की फरमाइश आई है जी पिंड बुरज हनुमानगढ़ फाजिलका तो अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा। ये ने जी पिंड अमीर शाह वाला तहसील जीरा तो मुख्तियार सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी, अलिका डब्बाली तो बसंत सिंह चन, राजकुमार सुनीता ते कुलदीप गांधी, फिलौर तो बिल्ला टेलर देव विश्व प्रेमी।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली

0: सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है जी अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समां।

0: रात 10 बजे सुनोगे संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिस विच कलाकार होंगे प्रभात मुखोपाध्याय। इस दरमियान समाचार ते मुख समाचार अपने निर्धारित समय ते वारोवार प्रसारित किते जाणगे। एहसान साडे अज दिन भर च प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्राम ते उना दा प्रसारण समा। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां, हुण सुणदे हां प्रादेशिक खबरां।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। हुण तुसीं सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पंजाब पुलिस ने अमृतसर विच सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी के एक होर नेटवर्क का पर्दाफाश करदिआं 4 मुलजमान गिरफ्तार किया है। उन्हां दे कब्जे विचों 10 आधुनिक पिस्तौलां अते जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अमृतसर विच पिछले कुछ दिनों विच दूजी अजिही बरामदगी है। शुक्रवार को नवी दिल्ली विच रह रहे एक अफगान नागरिक समेत 7 मुलजमान तो 2 सब मशीन गन्स, नशीले पदार्थ अते वड्डी गिणती विच हवाला मनी समेत 10 आधुनिक हथियार बरामद किए गए सन। दोवां मामलों में गिरफ्तार किए गए मुलजम विदेशी तस्करों के इशारे से काम कर रहे सन और अपराधिक अंसरों को अगे सप्लाई करने लिए सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की खेप हासिल कर रहे सन। मामले की अगलेरी जांच जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने समाणा विखे स्टेडियम का नींह पत्थर रख्या। इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री ने कल कहा कि सूबा सरकार खेड सभ्याचार नूं प्रफुल्लित करन अते नौजवानां नूं नशियां दी लानत तों दूर करन लई सूबे भर विच 3,100 स्टेडियम बना रही है। उन्हां कहा कि सूबा सरकार नौजवानां दी खेडां विच हिस्सेदारी नूं उत्साहित करन, नशियां दे खात्मे अते खिडारियों नूं राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर लई तैयार करन वास्ते खेड बुनियादी ढांचे विच बेमिसाल निवेश कर रही है। उन्हां ए वी कहा कि ए स्टेडियम 10,35,00,000 रुपए की अनुमानित लागत नाल 9 एकड़ पंचायती जमीन ते बनाया जाएगा। स्टेडियम विच 8 लेना वाला अंतरराष्ट्रीय पद्धर का 400 मीटर का सिंथेटिक एथलैटिक ट्रैक होएगा। ये ट्रैक 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दियां दौड़ां वर्गे एथलैटिक मुकाबलों के नाल नाल होर ट्रैक मुकाबलों की मेजबानी लई ढुकवां होएगा। नशियां विरुद्ध लड़ाई विच खेडां नूं उत्साहित करन नूं सब तो मजबूत हथियार दसदिआं उन्हां कहा कि खेड सभ्याचार नूं उत्साहित करना नशियां विरुद्ध सूबा सरकार दी मुहिम विच सब तो कारगर साधन हो सकदा है। पंजाब दे खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया ने बठिंडा विखे सूबे दी पहली बायो फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी दा

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ, ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸਰਗਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।

0: में।
1: किसमें भाई?
0: अरे किसिंग कार में यार।
1: ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना, बेकार सुना, डकार भी सुना, किसिंग कार क्या होता है?
0: अरे जिसमें किस करते हैं यार।

0: लंका को स्टोरी सुनाना स्टार्टिंग से सुनाना। भाभी को घुमाने के लिए किधर लेके गया?
1: अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में लेगी।

0: नहीं रे, सर्कस सर्कस
1: सर्कस का वो?
0: अरे सर्कस में शेर है ना यार।
1: तो
2: रिंग मास्टर को 100 का नोट दिखाया, उसने जोर से फिर हंटर घुमाया।
1: हंटर हंटर ने क्या हुआ?
2: शेर ने किया रोर, वो लपकी मेरी ओर, फिर शेर को मैं बोला ए मामू वंस मोर।
1: अरे भाई, शेर को मामू बोल डाला, फिर क्या हुआ?
2: डर से उसने ऐसे मुझको गले लगाया, क्या बताऊं सर के, अरे कितना मजा आया।
1: ऐसा हो गया भाई।
0: हाँ।

0: इसमो कबूल दे उना क्या
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड वालों अमूल, इफको ते नाबार्ड समेत 8 प्रमुख सहकारी संस्थावां दे सहयोग नाल विकसित की गई भारत टैक्सी ड्राइवरां नूं सीधे तौर ते वध तों वध वित्तीय लाभ पहुंचाउण लई जीरो कमीशन मॉडल ते काम करदी है। श्री शाह मुख पहलकदमियां दी शुरुआत करन ते समीख्या मीटिंगां करन लई गुजरात दे 3 दिनां दौरे ते ने। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई की प्रशंसा की, कहा कि भारत ने शानदार आर्थिक तरक्की की है, विश्व पद्धर से इसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस विखे एक न्यूज एजेंसी दिते इंटरव्यू में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सब तो नज़दीकी रणनीतिक भाईवाल मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विचकार नेड़ले संबंध दोहां देशों विचकार सहयोग को होर मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका विचकार व्यापार सप्लाई लड़ी महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री आवाजाई की आज़ादी वर्गे खेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने दोहां देशों विचकार संबंधों को मजबूत करने में भारतीय अमरीकी भाईचारे के योगदान की भी शलाघा की। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, तो यूट्यूब पर साडा चैनल है @AIR जलंधर। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि दुनिया भर में किसी भी अर्थव्यवस्था की ताकत उसके सूखम छोटे ते दरम्याने उद्यमा MSME सैक्टर के योगदान में है। आज नवी दिल्ली में MSME दिवस 2026 मौके एक समागम को संबोधन करते हुए कहा कि भारत में MSME सैक्टर पहली पीढ़ी के उद्यमियों की हिम्मत और उद्यमी भावना को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह सैक्टर देश की कुल बरामद का लगभग 50% योगदान पाता है। उन्होंने उद्यमियों को उत्पादकता उत्पादन और म्यार को होर वधाने लई आधुनिक तकनोलॉजी अपनाने की भी अपील की। पंजाब पुलिस ने अज अमृतसर में सरहद परों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी से एक होर नैटवर्क का पर्दाफाश करदिया 4 मुलजमान गिरफ्तार किया है। उन्होंने कब्जे में 10 आधुनिक पिस्तौलों से जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अमृतसर में पिछले कुछ दिनों में दूजी अजिही बरामदगी है। शुक्रवार को नवी दिल्ली में रह रहे एक अफगान नागरिक समेत 7 मुलजमान तो 2 सब मशीन गन्स नशीले पदार्थ और वड्डी मात्रा में हवाला मनी समेत 10 आधुनिक हथियार बरामद किए गए सन। दोवां मामलों में गिरफ्तार किए गए मुलजम विदेशी तस्करों के निर्देशों से काम कर रहे सन। वह अपराधिक कंसरों को अगे सप्लाई करने की सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की खेप हासिल कर रहे सन। मामले की अगलेरी जांच जारी है। काउंटर इंटैलीजेंस कश्मीर ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून UAPA तहत जांच के हिस्से वजो वादी में कई थावां ते छापेमारी की है। अधिकारियों ने दस्सिया कि 4 जिलों श्रीनगर गांधरबल कुपवाड़ा ते अनंतनाग में 5 थावां ते तलाशी ली गई। यह छापेमारी 2023 में काउंटर इंटैलीजेंस कश्मीर पुलिस स्टेशन के जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में दर्ज एक मामले की जांच नाल जुड़ी है। प्रसिद्ध तमिल फिल्म अदाकार ते निर्देशक के भाग्यराज का अज सवेरे चेन्नई में दिल का दौरा पैण कारण देहांत हो गया है। वह 73 साल के सन। छाती में दर्द की शिकायत तो बाद उन्होंने एक प्राइवेट हस्पता जाया गया पर उन्होंने बचाया नहीं जा सकया। उन्होंने प्रसिद्ध हिंदी फिल्म आखिरी रास्ता समेत 25 तो वध फिल्मों का निर्देशन किया, करीब 75 फिल्मों में अदाकारी भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम में देश विदेश के लोगों अपने विचार साझे करेंगे। यह हर महीने प्रसारित होने वाले रेडियो प्रोग्राम का 135वां एपीसोड होएगा। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क आकाशवाणी खबरों की वैबसाइट से न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप से प्रसारित किया जाएगा। इसनों AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण तो तुरंत बाद प्रोग्राम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेगा। कोलकाता में तारतला च इमारत ढहण की घटना में मरण वाले की गिनती 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी ने। भारत के किदांबी श्रीकांत

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबहा समंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी करार दिया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अपने कलीदी साथियों में से सबसे ज्यादा करीबी समझता है, जो मुश्तरका अकदार और मफाद रखते हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह ने गुजरात के 14 बड़े शहरों में इमदाद बाहिमी पर मबनी भारत टैक्सी सर्विस का आगाज किया है। तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का चेन्नई में 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल के फीफा आलमी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अपने दौरे में जनाब मोदी सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि इस दौरे में वो सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम का शर्फ हासिल करेंगे। वजीर आजम सेशल्स में भारतीय बरादरी से भी बातचीत करेंगे, जिसकी वजह से भारत और सेशल्स के दरमियान खसूसी दोस्ती परवान चढ़ी है और ये बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल का काम अंजाम दे रही है। मजीद तफसील हमारे नमानिगार से।
1: वजीर आजम मोदी अपने दौरे के दौरान सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। आज उनके प्रोग्राम में बोटेनिकल गार्डन्स में शजरकारी की तकरीब में शिरकत और सेशल्स साहेली मुहाफिज दस्ते के अड्डे का दौरा शामिल है। भारत और सेशल्स के दरमियान तारीखी, सकाफती और अवामी रवाबित पर मबनी देरीना साझेदारी है। बहर हिंद के खित्ते में एक अहम बहरी हमसाया होने के नाते सेशल्स को भारत के महासागर विजन और आलमी खित्ते जुनूब के तई वाबस्तगी में खास अहमियत हासिल है। ये दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती के अज़्म का यादा करेगा और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद उसत देने के मुश्तरक अज़्म को तकवीत फराहम करेगा। सुपर्णा साइकिक रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सेशल्स ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सेशल्स आमद से कबल सेशल्स की वज़ीर ख़ारजा बेरी फोर ने कहा है कि मौजूदा आलमी निज़ाम और बैनुल अक़वामी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है, ताकि ये मौजूदा दौर के हक़ाइक़ का

0: बेहतर अक्कासी कर सकें। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी कसीर आबादी, बढ़ते हुए आलमी रसूख, अमन कायम करने की कोशिशों, बहरी सलामती और कसीर जहती सफारतकारी में अहम रोल की वजह से सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का पूरा मुस्तहिक है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत की ये कहते हुए तारीफ की है कि भारत ने खातिर ख्वाह इकतसादी तरक्की की है और वह आलमी सतह पर एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। व्हाइट हाउस में खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अमरीका के करीब तरीन दफाई शराकतदारों में समझती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने एक ऐसे मुल्क की क्यादत की है जो इकतसादी तौर पर मजबूती के साथ तरक्की कर रहा है और लगातार एक मौसर आलमी ताकत बनता जा रहा है। रूबियो ने यह भी कहा कि वजीर आजम मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी करीबी हैं। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत के लिए ये एक अहम बात है। उम्र दाखला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने गुजरात में गांधीनगर के महामंदिर में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज़ किया। इमदाद बाहिमी पर मबनी अपनी नौयत की यह पहली टैक्सी सर्विस है और इसे अगले दो साल के दौरान मुल्क भर के 500 शहरों और कस्बों तक तौसी दी जाएगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी इमदाद बाहिमी के शोबे में तब्दीली लाने की सिमत में एक अहम कदम की हैसियत रखता है। इस सर्विस की शुरुआत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये सर्विस इस बात को यकीनी बनाएगी कि ड्राइवरों को आमदनी का एक बड़ा हिस्सा मिल सके और मुसाफिर मुनासिब खर्च पर महफूज सफर कर सकें।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: जनाब अमित शाह ने अमूल इमदाद बाहिमी तहरीक की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत टैक्सी भी इमदाद बाहिमी के इसी जज्बे के तहत काम करेगी और इज्तमाही मिल्कियत के तवस्सुत से आवाम को बाख्तियार बनाया जा सकेगा। जनाब अमित शाह ने इन दिनों जनाब अमित शाह इन दिनों गुजरात के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि किसी भी जारहियत का जवाब ताकत से दिया जाएगा। उनका यह बयान अमेरिका की जानिब से ईरान के ठिकानों पर फौजी हमलों के चंद घंटे बाद सामने आया है। एक्स पर एक पोस्ट में जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी के माहदे पर दस्तखत किए हैं और अमरीका ने भी इसकी मुकम्मल पासदारी की है। उन्होंने मजीद कहा कि माहदे से मुतालिक किसी भी इख्तलाफ को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया तो इसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के मिजाइल और ड्रोन जखीरा गाहों के अलावा साहिली रेडार तनसीबात को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक एक कार्गो जहाज पर हमला जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी था। उसने मजीद कहा कि माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी अफवाज खित्ते में मौजूद रहेंगी। मारूफ तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें फौरी तौर पर एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। ताहम डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके पास पसमांदगान में उनकी अहलिया पूर्णिमा भाग्यराज, एक बेटा, एक बेटी और पोते पोतियां शामिल हैं। भाग्यराज एक मुमताज़ फिल्मसाज थे जो अपनी दिलचस्प कहानियों, मुनफरिद स्क्रीन प्ले और हाजिर जवाब मुकालमों की वजह से तमिल सिनेमा में एक ख़ास मकाम रखते थे। उन्होंने कई कामयाब तमिल फिल्मों की हिदायतकारी की। उन्होंने मकबूल हिंदी फिल्म आखिरी रास्ता भी उसकी भी हिदायतकारी की थी। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय, डीएमके के सरबराह और साबिक वजीर आला एमके स्टालिन समेत कई अहम शख्सियात ने उनके जसद खाकी पर गुलहाए अकीदत नजर किए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूम कल चेन्नई में अदा की जाएगी। कोलकाता के तारातला इमारत की गिरने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। बचाव और इमदादी काम जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि शुमाली बहरे अरब के मजीद कुछ इलाकों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बकिया इलाकों, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों

0: और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरक के कुछ इलाकों में आज शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। फुटबॉल के फीफा आलमी कप में आज मिस्र और ईरान का मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया, जिसके नतीजे में मिस्र नॉकआउट मरहले में पहुंच गया और वो पहली बार नॉकआउट में पहुंचा है। आज सुबह मैक्सिको के ग्वाडालाखारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरफहरिस्त हो गया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशभा समुंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी करार दिया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अगले कलीदी साथियों में सबसे ज़्यादा करीबी समझता है, जो मुश्तरक अकदार और मफादात रखते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वज़ीर अमित शाह ने गुजरात के 14 बड़े शहरों में इमदाद बाहिमी पर मबनी भारत टैक्सी सर्विस का आगाज़ किया है। तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का चेन्नई में 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। और फुटबॉल के फीफा आलमी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुँचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। सुनदे अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत अलका याग्निक दी आवाज़ विच।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: टिकट खरीदी सी? नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्ट लिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर दे के पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
1: इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज ते।
0: ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਰੁਕੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।
2: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
3: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
5: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उस

0: इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है, और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट 175 मिलियन डॉलर पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
4: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
4: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
5: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार,

तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा

0: मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया।

0: यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर के 2:03 हो रहे ने। हुन पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनते हाँ सुभाष चंद्र की आवाज़ विच एक गीत।

0: मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 135वीं कड़ी
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ।

केंद्रीय गृह अते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के 14 शहरां विच भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत की। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई की शलाघा करदिया कहा है कि भारत ने शानदार आर्थिक तरक्की की है।

संदीप गोगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, मस्कीन कौर लिखिया शायद जी, ते अशप्रीत शर्मा, विपाशा शर्मा, ते इन्होंने भी कोई भी गीती फरमाइश की। आओ इन्होंने सारे की रली मिली फरमाइश ते सुनते हैं बब्बू मान की आवाज़ च गीत।

0: तेनू लख दे एक सुनावा
1: सुना।
0: तेनू दफ्तर हुणे पचावा
1: सच्ची
0: किसे बुढड़े ड्राइवर ताई किसे बुढड़े ड्राइवर ताई ना बाबा आ कु सुनाई तेनू लख दे एक सुनाना ते तेनू ते तेनू

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी अमृतसर अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। शाम दे 4 बज रहे ने, साड़ी दूसरी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच आओ सुणदे हां हुण तक दे मुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैशल्स दे राष्ट्रीय दिवस दे 50 साला समारोह विच शामिल होने लई अज तो सोमवार तक सैशल्स दे दौरे ते ने। सैशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच स्थाई मैंबरशिप लई भारत दी दावेदारी दा समर्थन कीता है। केंद्रीय गृह अते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत की है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई की शलाघा करदिया कहा है कि भारत ने शानदार आर्थिक तरक्की की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की ताकत उसके MSME सैक्टर के योगदान विच है। पंजाब पुलिस ने आज अमृतसर विच सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी के एक नेटवर्क का पर्दाफाश करदे 4 मुलजमान गिरफ्तार किया है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने समाणा विखे स्टेडियम का नींह पत्थर रख्या। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार खिडारियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धर लई तैयार करने वास्ते खेड बुनियादी ढांचे विच बेमिसाल निवेश कर रही है। पंजाब दे खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बठिंडा विखे सूबे की पहली बायो आर्टिफिशियल क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी का उद्घाटन किया। तीन जुलाई तो शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ यात्रा लई तैयारियां तेज हो गई ने। भारत के किदांबी श्रीकांत रौनक चौहान और देविका सिहाग कैलिफोर्निया में US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सैमीफाइनल में पहुंच गए ने। एसान हुण तक दे मुख समाचार। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां।
1: मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल DD न्यूज DD भारती DD इंडिया ते DD किसान चैनल ते भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़

लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। इस शब्द का गायन किया सी भाई सतविंदर सिंह अते भाई हरविंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असे आकाशवाणी ती जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ऐसे 5 मिनट 5 सेकंड हुए ने हुन पेश है प्रोग्राम दा वेरवा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: समय विच वधेरे लाभ, बस एक क्लिक ते, कमाल है।
4: फसिया।
5: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो, RBI कहंदा है
6: जानकार बनो, सुचेत रहो।
7: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1। ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 दिहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया

0: हाँ जी रोलिया राम जी, लंघ आइए।
1: आजू आजू आजू आजू शिंगारा सिंह जी, आजू बच्चे वाले आजू।
0: जय हिंद जी, रोलिया राम जी, जय हिंद।
1: जय जय जी, शिंगारा सिंह जी, बच्चे वाले की हाल चाल है? ताडा
0: हाल चाल तगड़े ने जी, वल ने पूरे।
1: देखो जिदा जेड़े मुल्क दा खाइए उहदा बुरा नहीं मंगी।
0: वाह

0: महीने हो रही है। आ देखो, आज ही डैडी दी चिट्ठी आई है।
1: अच्छा, लिया भी लिया, पहले मेरे पढ़न दे। रमेश, फिर तो कांग्रेचुलेशन यार, फिर तो तेन मिठाई का डब्बा भी नाल ही लेना चाहिए सी। मसे मसे रब ने तेरी सुनिए ते मुंह भी मिठा नहीं करवा
0: क्यों नहीं,
1: रहे।
0: क्यों नहीं, भरजाई जी भी बाजारों आ लैन, वो चाह बना के पिलाएंगे ते मिठाई मैं ले आवांगा।
1: और रहन दे यार, भरजाई तेरी अपने पेरेंट्स वाल गई हुई है, कल सवेरे आएगी। तू उठ, मिठाई लिया ते मैं इन्ने चिर में चाह बना लेना।
0: पर एक शर्त है।
1: ओके बे, खैर अज असी अति प्रसन्न हाँ, तेरी हर शर्त पूरी करांगे। बोल।
0: वर्मा साहब, मैं अक्सर सोचता कि तुहानू शादीशुदा जीवन का बड़ा तजर्बा है।
1: ओके मैं बे,
0: साढ़े वर्गे नौकरी पेशा लोगों नू मेरे ख्याल विच सिर्फ दो व्यक्तियों नू खुश रखने की जांच आनी चाहिए है, दफ्तर विच अपने उपरले अफसर नू ते घर विच बीवी नू। जिंदगी दे ना दोवें वड्डे राम खेतरां विच तुसी बड़े कामयाब हो। वेखो ना, दफ्तर विच अपने इमीजिएट बॉस नू खुश रख के तुसी फटाफट क्लर्क तो अफसर बन गए, ते घर विच भी तुसी भरजाई जी ते क्यों खिचड़ी वांग रहिंदे हो।
1: क्यों खिचड़ी वांग, तो बड़ी मामूली गल है रमेश। तू इंज कह कि शेर ते बकरी इक्को घाट तो पानी पी रहे हैं।
0: शेर ते बकरी वांग। वर्मा साहब, मैं समझा नहीं तुहाडी गल, मैनू ये दसो कि तुहाडे दोवां विचों शेर कौन है ते बकरी कौन है।
1: तू फिक्र ना कर पुत्र, तेरा ब्याह अगले महीने हो रहा है ना, ते बस समझ ले, उस तो अगले महीने तक तेनू सारी समझ आने लग
0: नहीं वर्मा
1: पाएगी।
0: साहब, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। तुसी अपने तजुर्बे तो हैप्पी मैरिड लाइफ दे दो चार सुनहरी उसूल अज ही ते हुणे ही दस दिओ, मैं तुहाडा एहसान सारी उम्र नहीं भुलांगा।
1: अच्छा ये गल है, जे तू सचमुच मेरे को कुछ सीखना चाहना है तो फिर सुन, जरा ध्यान ना सुनी है।
0: जी जी
1: हाँ, पर पहला मिठाई तो लै, उठ छेती कर। तेनू चाहिए तो यह सी कि पहला मेरा मुंह मिठा करांदा ते सुनहरी असूल पुछण दी हिम्मत बाद च करदा। चल उठ छेती,
0: एक
1: उठ
0: मिनट
1: ना।
0: वर्मा साहब, मेरी गल तो सुन लो, मैं तो तुहाडे ही फायदे की गल सोच रहा सी।
1: ओके बे, एवें टरकाई ना जावन।
0: नहीं, मैं सोच रहा सी कि भरजाई जी हुण कल सवेरे आउणा है, ते रात दी रोटी तां असीं दोवां ने खानी है, क्यों ना किसे चंगे जे होटल विच डिनर खा के थोड़ी जी याशी कर ली जाए।
1: आइडिया तो बड़ा ग्रैंड है तेरा, चलो ठीक है, ले फिर सुन। पर गल बनी नहीं, तू मेरे नाल कितने 420 तो नहीं कर रहा? मैं भी अपने सुनहरी असूल तेन होटल विच डिनर वेले ही दस दिया।
0: ओ वर्मा साहब दी ग्रेट, तुसी मैनू गलत ना समझो, आई ऑलवेज मीन वट आई सी, तुसी विश्वास करो।
1: अच्छा चल कोई गल नहीं, तू अपना अजीज है। ले फिर सुन, मेरे कुछ खास सुनहरी असूल। वेख रमेश, घर विच बीवी तो बास वांग ही होंगी,
0: जी
1: हेड ऑफ दी होम डिपार्टमेंट, उस दी हां विच हां मिलांदे जाओ, बस कामयाब हो जाओ।
0: की मतलब वर्मा साहब, थोड़ी रोशनी पाओगे अपने सुनहरी असूल उते।
1: क्यों नहीं क्यों नहीं, हां विच हां मिलान दा मतलब बस एहो है कि अपने बीवी दे मूड नू भांप लो ते उस दे दिल दी गल लभ लो।
0: इस तरह नहीं वर्मा साहब, तुसी अपने निजी तजर्बे चो कोई एग्जाम्पल दे के समझाओ।
1: एग्जाम्पल ओ जिन्निया कह उन्निया सुना देवा।
0: फिलहाल तो तुसी एक ही सुना दियो, पर होवे कोई क्लासिक।
1: अच्छा लै सुन, औरतों नाल सक्सेसफुली डील करन लई एक बेसिक गल ध्यान विच रखन वाली ये है कि हर औरत अपनी तारीफ दी भुखी हुंदी है। उस दी हर चीज़ तो उस दे हर कम दी तारीफ इस तरह करो कि वो थोड़ी गल उत्ते 100% विश्वास करन लग पवे, उस दे दिल विच यकीन बह जाना चाहिए कि सारी दुनिया बिच सिर्फ तुसी उसकी सुंदरता ते उसकी अकल दे सब तो बड़े प्रशंसक हो। बस फिर समझ ले कि तू जिंदगी दी बाजी जित ले।
0: सचमुच वर्मा जी,
1: तेरा की मतलब मैं इन्ने चिर चो बकवास करी जा रहा?
0: आई एम सॉरी वर्मा साहब, तुसी अपना बयान जारी रखो, मेरा मतलब अपने सुनहरे असूल दी व्याख्या चालू रखो।
1: मेरा यह पेन था तू कई चिर तो वेख रहे।
0: जी
1: मेरी श्रीमती जी अक्सर अपने बाप दी अमीरी दा रोह पाण लई मैनू याद करवाउंदे रहिंदे ने कि ये पेन उन्होंने खास करके अपने जवाई लई यानी मेरे लिए विलायत तो मंगवाया सी।
0: हाँ वर्मा जी, ये तो तुहाडे बारे दफ्तर वाले भी जानते हैं कि तुहाडा ये पेन इंपोर्टेड है ते बड़ी हाई क्वालिटी का है, इसे लिए तो तुसी एक मिनट लिए भी किसी नूं नहीं देंदे सिवाय शायद अपने बॉस ते।
1: बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, हुण मैं तैनूं पहली बार दसन लगा कि ये इंपोर्टेड पेन नहीं
0: हैं
1: बल्कि साढ़े अपने देश का ही बनया होया। साढ़े ससर साहब ने चलाकी सिर्फ इन्नी की है कि इस उत्ते मेड इन यूके लिखवाया है। पर मेरा कमाल वेख कि अज तक अपनी मोस्ट इंटेलिजेंट

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, TRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले 7:30 बजे ने हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुणोगे पंजाबी च खबरां।

Hello, dear friends. Welcome to Lamhe Program with me, your RJ Chetan. Today, I'm talking about upscaling. Upscaling के माध्यम से कंपनियां नए कर्मचारियों को नियुक्त करने पर समय और बजट खर्च करने के बजाय अपने मौजूदा कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाकर पैसे बचा सकती हैं। इसके अलावा मौजूदा कर्मचारी अपनी नौकरी से गारंटीकृत वेतन और आरामदायक कार्यस्थल के माहौल से ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी अब सशुल्क छुट्टियां, किफायती स्वास्थ्य सेवा और पेशेवर प्रशिक्षण जैसे लाभों की उम्मीद करते हैं। कर्मचारियों को अपस्किल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके संगठन कर्मचारियों को ये संदेश देते हैं कि उन्हें महत्व दिया जाता है और कंपनी के साथ उनका भविष्य समर्पित है। नौकरी की भूमिकाएं और उनकी आवश्यकताएं तेजी से बदल सकती हैं। कर्मचारी अपनी कंपनी में विकास के अधिक अवसरों की अपेक्षा करते हैं। ये कौशल अंतराल को कम करके किसी संगठन को अधिक प्रतिस्पर्धित बनाने में सक्षम है। इससे कौशल अंतराल को भरने के लिए कंपनी के बाहर से भर्ती करने की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे कर्मचारी संतुष्टि बढ़ती है, प्रेरणा, प्रदर्शन और मनोबल बढ़ता है। इस

से कर्मचारियों की प्रतिधारणा क्षमता बढ़ती है। नियुक्तियों पर रोक और नौकरी बाजार में तंगी का मतलब है कि संगठनों को आवश्यक भूमिकाओं के लिए नई प्रतिभाओं को अपने यहाँ ही खोजना होगा, जो कि कौशल उन्नयन से संभव होता है। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। कौशल अंतराल की पहचान करें। अपस्किलिंग रणनीति विकसित करते समय कंपनियों को सबसे पहले अपने संगठन में मौजूद कौशल अंतराल की पहचान करनी चाहिए। ये कदम व्यवसायों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनके अपस्किलिंग प्रयास उनके कार्यबल की जरूरतों के अनुरूप हो। इसके बाद कंपनियों को अपस्किलिंग प्रयासों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, बाजार में सबसे नए उपकरण पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो सकता है, हालांकि ये विकास दीर्घकालिक रूप से व्यवसाय की मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए एक संगठन को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वे दीर्घकालिक मूल्य बढ़ाने के लिए अपने मुख्य कौशल को कैसे सुधार सकता है। हालांकि उद्योग के रुझाने के साथ बन रहे और नई तकनीक का उपयोग करना अभी भी आवश्यक है, ताकि कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रख सके। एक बार कौशल अंतराल की पहचान हो जाने के बाद व्यवसाय उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निर्माण और चयन करना शुरू कर सकते हैं जो उनके लिए सबसे अधिक सार्थक हो। ये कुछ कारकों को निर्धारित करता है, जैसे क्या वॉल्यूम प्रशिक्षण सत्र की आवश्यकता है या फिर एक पर एक पाठ अधिक लाभदायक होगा, क्या प्रशिक्षण आंतरिक रूप से किया जा सकता है या किसी बाहरी शैक्षणिक संस्थान को नियुक्त करने की आवश्यकता है, किस प्रकार की शिक्षा सबसे अधिक सार्थक है, मार्गदर्शन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सत्र या उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम, कौशल उन्नयन की योजना तैयार करना। दोस्तों, अब मैं आपको अपस्किलिंग के लाभ के बारे में बताने जा रहा हूँ आज के लम्हे प्रोग्राम में, और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। अपस्किलिंग में मौजूदा कर्मचारियों को नई नौकरी कौशल सिखाने में मदद मिलती है, कंपनी को नौकरी के आवेदकों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है और कर्मचारी अनुभव को बेहतर बनाता है। इसके अलावा, जबकि अपस्किलिंग कार्यक्रम महंगा है, वे एक मजबूत बॉटम लाइन और निवेश पर रिटर्न उत्पन्न करते हैं। श्रमिकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण के अवसर बनाना अक्सर कार्यस्थल की समस्याओं को संबोधित करने की तुलना में कम खर्चीला होता है। निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने से कर्मचारी प्रतिधारण दर भी बढ़ती है, जिससे टर्नआउट कम होता है और भर्ती और ऑनबोर्डिंग लागत कम होती है। कर्मचारी जुड़ाव से सुधार करता है। संभवित और मौजूदा कर्मचारी अपने नौकरियों में पेशेवर विकास और प्रशिक्षण के अवसर चाहते हैं, और वे ऐसी भूमिकाओं की तलाश करेंगे जो ये विकल्प प्रदान करती है। अपस्किलिंग इन कर्मचारी मांगों को पूरा करता है, जैसे कर्मचारी उत्पादकता को अनुकूलित करता है, कर्मचारी जुड़ाव में सुधार, अंततः उत्पादकता बढ़ाता है। साथ ही अगर कर्मचारी उस तकनीक को नहीं समझते हैं जिसके साथ वे काम करते हैं, तो वे अपनी नौकरी में उत्कृष्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कर्मचारियों को नई तकनीक में अपस्किलिंग करना उनकी उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, अब रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के बीच अंतर आप समझेंगे आज के लंबे प्रोग्राम में चेतन के साथ। अपस्किलिंग का मतलब है मौजूदा कर्मचारियों को अतिरिक्त कौशल प्रदान करना। ये नए कौशल किसी मौजूदा भूमिका को बेहतर बनाने या उसके विस्तार करने या किसी व्यक्ति के करियर पथ में अगले चरण के लिए योग्य बनने के लिए सीखा जाता है। अपस्किलिंग का एक उदाहरण एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो सकती है, जो अपने डेवलपर्स को एक नई भाषा की प्रशिक्षण देती है, जिसका उपयोग वे नए उत्पाद विकसित करने के लिए करेंगे। दूसरी ओर, रीस्किलिंग का मतलब है किसी असंबंधित भूमिका के लिए नए कौशल सीखना या करियर में बदलाव करना।

रीस्किलिंग के लिए अक्सर किसी कर्मचारी को किसी अलग क्षेत्र में डिग्री या प्रमाण प्राप्त करने के लिए कॉलेज या ट्रेनिंग में वापस जाना पड़ता है। रीस्किलिंग का एक उदाहरण है निर्माण श्रमिक हो सकता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए स्कूल वापस जाता है। अपस्किलिंग कर्मचारियों को उनके करियर में एक रेखिया पथ के लिए विकसित करती है, जबकि रीस्किलिंग का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति के करियर के लिए पार्श्व आंदोलन के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का कार्यक्रम अपस्किलिंग के बारे में। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

प्रोग्राम सुरसरता च तुसे सुन रहे हो पुष्पा हंस दे गाए गीत नैना रे नैना। सुनते हैं एक गीत

0: पुष्पहंस दे गाए इस गीते नाल ही सुरसरिता प्रोग्राम हुण खत्म होया। असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। साडा अगला प्रसारण हुण तुसीं सुणोगे दिल्ली केंद्र तों बस कुछ ही पलां च।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक

0: इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे

0: पर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए।

0: उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
2: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco Dimar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटीज, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग

0: फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प से शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है, लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पर जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ये हमारे पास एक टेबल है तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है, अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है बेड है बेड बहुत मजबूत होता है आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाए, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स से कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन

0: जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है। क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
2: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
2: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है, इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है। तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
2: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में, उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है। कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
2: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
2: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पर
1: जी।
2: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है। जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
2: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना, जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
2: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
2: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
2: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
2: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में आप बातचीत कर रहे हैं और

0: जल संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
2: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
2: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम से पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देता। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
0: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान, साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून महा विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की

0: संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में केनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर

0: डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
1: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
2: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है अभी। तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में, जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है।
1: जी,
2: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुक करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को

उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनिशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur.
2: He was initiated by Sri Dulal Roy.
1: He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और

0: थाला विलंबित रचना झप ताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिन्स हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झप ताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by मुस्तफा हुसैन। With that, we

0: Come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद

0: आहा, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। सरदूल भाजी भी आप भी अमर ने ते उन्हां दे गीत भी अमर ने, ते परमात्मा ने उन्हां नूं जिहड़ा उन्हां दा साथ जीवन साथी दित्ता सी, वह भी अमर ही दित्ता सी, अमर नूरी। सो उन्हां दा प्यार भी अमर ही है। ते साडे विहड़े साडे कॉलर दोस्त अज दे पहले ही पहुँच चुके ने। आओ फिर आपका कैम करते हैं ते देखते हैं भी कौन आए ने। हैलो,
1: हेलो सर जी, नमस्कार। सुखबीर
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं ते किहड़ी जगह तो बोल रहे हैं?
1: सिंह छाजली बोलदा जी। सुखबीर
0: छाजली जी, बहुत बहुत स्वागत पूरे ढोल ढमके दे नाल तुहाडा, असीं स्वागत करते हैं।
1: वाह जी वाह, शुक्रिया जी। वाह जी, बहुत वधिया स्वागत करन, श्रोतियां नूं भी चाहीदा सोदा, असीं भी सोदा ही स्वागत करिए जी।
0: धन्नवाद जी, धन्नवाद जी।
1: हाँ जी,
0: सो दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए।
1: सर जी मिस पूजा की आवाज बड़ी वधिया, उन्होंने लाओ जी कोई भी गाना जी।
0: ठीक है जी, धन्नवाद दोस्त कॉल करने
1: ठीक
0: दे।
1: है, ठीक है सर, ओके ओके।
0: ओके जी।

0: हेलो,
1: हेलो। सत
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते कड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: राजू
0: क्या बात है राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत है।
1: चंडीगढ़ का।
0: राजू जी, जदों तुसी नाँ लैंदे हो ना सुखना झील दा, मैं क्या मेरा एसी दे विच बैठे दा भी दिल करन लग पैंदा कि बस मैं हुण ना फटाफट छाल मार के एक वारी चुब्बी मार ही लां। जिहड़ा रब दियां दित्ते हुए एसी है ना, उहनां दा नज़ारा अपना ही है, ठीक है ना? बाकी गल्लां तां सारियां बाद दी। हैलो। हाँ जी,
1: ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਿਮ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈਏ? ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
1: ਧੰਨਵਾਦ।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। हेलो,
1: हेलो कमल जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: जी मनजीत कौर बोल रही हां जी।
0: मनजीत जी, बहुत बहुत स्वागत, पूरे ढोल ढमके दे नाल तुहाडा असीं स्वागत करते हैं। हां जी, होर ठीक हो जी?
1: हां जी हां जी ठीक है।
0: ते गर्मी दा दसो फिर किदां दिल्ली च?
1: गर्मी बहुत ज्यादा है कमल जी।
0: चलो गर्मी तो वैसे इत्थे भी है, ते दसो केड़ा गीत सुनाइए फिर।
1: गीत सुना दो जे मुंडिया वे मन्नू नचदे वेखना।
0: हां जी हां जी
1: हां जी।
0: ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਝੰਜ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਦੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੜਵਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ,
1: ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: ਧੰਨਵਾਦ।

0: हेलो।
1: हेलो, सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर। मैं संतोष कुमार यादव और कोलीकाट मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। मैं
0: सो बहुत बहुत स्वागत जी, और पूरे ढोल ढमक्के दे नाल असीं तुहाडा स्वागत करते हैं
1: सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं संतोष कुमार यादव और सर आपका मैं बहुत पुराना फैन हूँ सर।
0: हाँ जी, हाँ जी, बताइए संतोष जी, कौन सा आपको गीत सुना दें?
1: सर मैं गीत का नहीं होता है सर, अपने मन पसंद का कोई भी गीत सुना दे। कहा बताए सर जी, मैं एक ही मैं बोल रहा हूँ, हकदार रोटी खाइए कि बूट फालसा करिए सर। इंसान को सच्चाई पे चलना चाहिए सर।
0: ठीक है जी, ओके जी, ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।

0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ठीक गल कही उन्हां ने। जिन्हां कीती ना कमाई उन्हां रज के की खाणा। देखो कमाइयां भी दो तरह दियां होंदियां, एक पैसिआं वाली कमाई हुंदी, एक कर्मां दी कमाई हुंदी है। तो जदों असीं किसी नूं तंग परेशान करदे हां तो अपने कर्म भी माड़े बनाने हां। तो दुनियावी कमाई तो है ही है, सानूं दोनों कमाइयां जिहड़ियां है वो चंगियां करनियां चाहीदियां। तो आओ फिर गल करदे हां अपने अगले कॉलर दोस्त दे नाल। हैलो,
1: हेलो, नमस्कार कमल शर्मा जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने ते किहड़ी जगह तो?
1: श्री गुरु रविदास नगर मलूक तो फकीर चंद रसगड़ियां जी।
0: रसगणिया जी, बहुत बहुत स्वागत, पूरे ढोल ढमके दे नाल तुहाडा स्वागत करदे हां।
1: कमल जी, थोड़ा ये ढोल ढमके नाल मतलब स्वागत करना बड़ा कैड़ी मतलब अंदाज है।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी,
1: हाँ जी,
0: धन्यवाद
1: मैं
0: जी,
1: कहना बहजा बहजा हो जाती है।
0: धन्यवाद जी,
1: वाकई AIR पंजाब चल रहा है जी,
0: बिल्कुल जी, धन्यवाद,
1: आकाशवाणी जलंधर चल रहा है जी। मेरे ख्याल
0: धन्यवाद
1: ये
0: जी,
1: सिस्टम होर किसी मैं रेडियो स्टेशन नहीं वेख्या। हाँ जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी। सो साढ़े प्यारे प्यारे स्रोते लिसनर आते हैं थोड़े वर्गे, तो फिर ढोल तो उन्होंने बनाना वैसे ही बजता। तो दसो कि गीत सुनाइए।
1: अज फिर अपने तू चेते आवे और कटकरे
0: वाह
1: साहब का की सुना
0: क्या
1: भाई।
0: बात है, क्या
1: हाँ
0: बात,
1: जी,
0: बिल्कुल ठीक है जी। लो जी, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू कमल शर्मा जी।

0: हेलो
1: शर्मा जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? केड़ी जगह तो बोल रहे हैं?
1: महेश गर्ग मंडी हरजीरा मलौट। जी
0: महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके के स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: थोड़ा भी धन्यवाद जी। तो दसो केड़ा गीत सुनाइए फिर।
1: आए हैं जी, सुरिंदर कौर ने चांदी के गड़े की मांग की सी जी।
0: जी हाँ जी, हाँ जी।
1: प्यासा सिंह मस्ताना कहना सोने का चूड़ा कौन हुई, हरजीत हरमन जी कहना जो कुछ मर्जी ला जी, मित्रां दा नाम चल रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लो जी आप हूँ ही सुना दिने ते ना तो भी चल रहा, देखो असी तुहाडे कहण ते भी गीत चलाउण लगे हो। भी
1: तो तुहाडी मेहरबानी है जी,
0: धन्यवाद जी, असी बैठे इस कर ले, धन्यवाद जी।
1: ठीक।

0: हेलो,
1: हेलो दोस्त
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं? केड़ी जगह तू? अच्छा, सो बहुत बहुत स्वागत बिट्टू जी, पूरे ढोल ढमके के नाल स्वागत है तुहाडा साडे स्टूडियो च। और दसो जी, फिर केड़ा गीत सुनाइए। हेलो हेलो हेलो,
1: जी
0: दसो केड़ा गीत सुनाइए। हाँ जी, हाँ जी, डिस्टरबेंस आ गई।
1: बाद
0: दसो केड़ा गीत सुनाइए। क्या बात है, वाकई जी, मौसम ही हूं तो नींबू वाला, हूं तो सारे के कलेजे पीड़ उठती पई है। ठीक है जी, और हूं तो जी बस पुछो कुछ ना, और कलेजे पीड़ कदी, हूं तो मैं कहना बस बंदा बुंद लिया पिया जी। सिर पीड़ भी हैगी, पैर पीड़ भी हैगी, ढिड पीड़ भी हैगी, जिन्नी गर्मी पै रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लो जी, फिर सुनते हैं।
1: ठीक है जी,
0: धन्यवाद
1: ओके
0: जी,
1: जी, बाय बाय बाय।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार शर्मा जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? तो कड़ी जगह तो बोल रहे हैं कटारिया साहब। बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके के नाल स्वागत है। हेलो।
1: मेहरबानी जी।
0: हाँ जी सर, दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए।
1: हरजीत हरमंदा सराहदे पंजेबा जी।
0: क्या बात है जी, लो जी पेश कर रहे हैं गीत थोड़े लिए। धन्यवाद
1: मेहरबानी जी।
0: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: कमल जी सत श्री अकाल
0: जी, कौन बोल रहे हो जी? तो केड़ी जगह तो बोल रहे हो?
1: देसराज ड्राइवर, तहसील टोहाना, जिला फतेहबाद, हरियाणा।
0: देसराज जी, बहुत बहुत स्वागत, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है।
1: थोड़ा ही बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: हाँ जी, दसो जी, केड़े कलाकार का गीत सुना दीजिए?
1: गुरदास मान का लाल।
0: धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।

0: निर्मल की गल, आज तू बड़ी चुप चुप लग रही है। खैर ता है?
1: नहीं कोई गल नहीं, सब ठीक ही है। थोनू कोई वहम हो गया लगता है।
0: वहम ते मैनू? आज तेरे मुंह बड़ी अजीब गल सुनी है। आज एने सालों बाद तेनू मेरे वहम ही होने का भुलेखा लग रहा है।
1: तुसी तो बुरा मन गए, असल विच तुसी ठीक ही कह रहे हो।
0: वेख्या, मेरा अंदाजा कदे गलत नहीं हो सकता। खैर हुन तुसी ए दसो देवी जी के परेशान क्यों हो?
1: कोई मानसिक कारण है जिसका संबंध मम्मी ते उस गुआंढा नाल होई सवेर वाली गुफ्तगू नाल है।
0: अच्छा, समझ गए समझ गए। मम्मी पोते दी लालसा करदे ने, यही गल है ना?
1: हाँ।
0: पर असी तो दूसरा बच्चा चाहते ही नहीं। सोनू बेटी ही अपना पहला ते आखिरी बच्चा है। फर्स्ट एंड द लास्ट।
1: अज तक मैं भी यही सोचती रही हूँ, पर हुण सोचती हाँ कि सानू अपनी चाहत वेखनी चाहिए है जां बजुर्गां दी।
0: तेरा ये कहन दा मतलब तो यही है निर्मल, कि तू भी मम्मी दी सोच दी हामी भर दी है।
1: हाँ इसे तरह ही समझ लो।
0: बड़ी छेती बदल गई है निर्मल। कि ये गल तू संजीदगी नाल कह रही है या मजाक नाल?
1: मैं इस मामले च बिल्कुल संजीदा हाँ।
0: ओह निर्मल, कि तू ये सोचा कि मेरे जेहा छोटा मुलाजम दो बच्चियां दी चंगी परवरिश किवें कर सकता है? इस महंगाई दे जमाने च इक्को बच्चा ही काफ़ी है। जे सोनू कल्ली होवेगी तो असी उसनू बड़ा योग बना सकांगे।
1: ये सब भाषण ने जनाब, हकीकत कुछ होर है। ते जद बंदे दा असलियत नाल मत्था लगता है फिर पता लगता है कि दुनिया कित्थे वसदी है। फिर दो बच्चे कोई ज्यादा हुंदे ने?
0: हाँ ज्यादा तो नहीं हुंदे।
1: तुसी कह तो दिता पर थोड़ी आवाज इन्नी डूंगाई विच्चों क्यों निकल रही है?
0: मैं कुछ अगे सोच रहा निर्मल।
1: मैं थोड़ी परेशानी समझ रही हाँ।
0: नहीं तू कुछ भी नहीं समझ रही, बस यही तो दुख है।
1: फिर दसो शायद कोई हल निकल आवे।
0: कि तू ये दस सकती है निर्मल कि तेरा अगला बच्चा लड़का ही होवेगा?
1: मैं तो नहीं पर अल्ट्रासाउंड दस सकता है।
0: ठीक है, पर जे अल्ट्रासाउंड ने दस्या कि लड़की है ता
1: शुभ शुभ बोलो प्लीज।
0: हद हो गई निर्मल। लड़की का नाम लेना अशुभ है, इस जगत दी जननी का नाम लेना अशुभ है। तो मैनू ये दस कि शुभ की है?
1: तुसी तो खामखा जज्बाती हो जाते हो, मैं ये तो नहीं।

0: पूजा पाठ का टाइम हो गया मेरा, तू जरा सोनू नू बुला लै, बाहर गली च खेड दी है, देखी किसी बच्चे नाल ना लड़ लुड़ पाए कितने।
1: जी मम्मी।
2: सोनू सोनू जल्दी आओ बेटे।
3: पहला दसो मम्मी मैनू की चीज दोगे?
1: पहला इधर आओ नेड़े। शाबाश, बैठो इत्थे मेरी गोद च। तुची अपने आप बुझो के थानू की मिलेगा।
3: मैं दसा जा टॉफी जा चॉकलेट जा लॉलीपॉप।
1: आज कुछ होर मिलेगा।
3: फिर जल्दी दसो ना मम्मी की देन लग गए हो।
1: आज मम्मी तेरे लिए सोनिया सोनिया रंग बिरंगिया चूड़िया लेके आए ने, आ वेख। अच्छी है ना, ले हाथ कर इधर।
3: नहीं नहीं मैं नहीं पांदी चूड़िया।
1: क्यों, की गल, तेनू सोनिया नहीं लगदिया चूड़िया?
3: रिंकू भी तो चूड़िया नहीं पांदा।
1: पर बेटे लड़के चूड़िया नहीं पांदे।
3: क्यों मम्मी, रिंकू दे हाथ भी टूट जानगिया?
1: नहीं बेटे, चूड़िया सिर्फ लड़कियां पांदिया ने, लड़के नहीं।
3: फिर मैं भी नहीं पानिया, मैनू भी लड़का बना दियो ना मम्मी।
1: ऐसा कोई लड़की लड़का नहीं बन सकती
3: मम्मी। खोर गल, डेजी कहंदी सी रिंकू ता उसका वीर है, सोनू का कोई वीर नहीं। मेरा एक वीर ले आओ ना मम्मी।
1: जरूर ले आवांगे बेटे, जरूर ले आवांगे। बढ़िया गल्ला मारा लग पी है मेरी बेटी। हाँ बहुत शैतान हो गई है मेरी लाजली बच्ची, चोनी बच्ची।
4: बढ़िया लाडियां पाड़ियां हो रही ने मां धी बिच, अज तो कोई खास ही गल लगती है।
1: जी हाँ, हुने थोड़ी बेटी ने बड़ी खास गल कीती है।
4: अच्छा, ओए ओए ओए, ओ मेरी प्याली बिटिया छोनू, ए तू अपनी मम्मी नू केड़ी खास गल आखी है?
3: पहला टॉफी दियो फिर दसांगी।
4: अच्छा, ए लव टॉफी ते हुन दछो।
3: मेरा एक वीर ले आओ ना डैडी।
4: हाँ जरूर जरूर लेके आवांगे मेरा प्यारा बेटा। हुन तू जाओ, जाके खेलो।
3: अच्छा डैडी।
1: बहुत शैतान हो गई है।
4: तू सिखाया होना इसनू, पूरा प्लान प्रोग्राम लगता है।
1: मैं सिखाया? थानू तो उंज शक करन दी आदत है। मैं उसनू कुछ नहीं सिखाया, बाहर गली च बच्चे नाल खेड रही सी। कितने डेजी ने आख्या होएगा कि सोनू का कोई वीर नहीं, बस यही गल याद रखी उसने।
4: अच्छा बाबा, गलती माफ, मैं समझा कि मेरे ऊपर कोई मनोविज्ञानिक प्रभाव पाया जा रहा है। मम्मी अजे तक नहीं आए?
1: नहीं आते गए ने, पूजा पाठ खत्म करके उन्हें आन वाले होने ऊपर।
4: पूजा पाठ?
0: क्यों बेटा, पूजा पाठ करना कोई बुरी गल है?
4: नहीं मम्मी, मैं ये तो नहीं आख्या।
0: आए तो फिर हसया क्यों है?
4: बस एवं कुछ सोच के कि पहला बंदा पाप करता रहता, फिर पाप नू पुंच बदलन लई पूजा पाठ का सहारा लैंदा
0: है। मैं की पाप कीता पुत?
4: अपने आप तो पूछो मम्मी कि तुसी अज केड़ा पुन धर्म का काम करके आए हो।
0: ले दस ना, जो कोई गुआंढ मथ्यो बुलाण आ जाए तो जाना ही पैंदा पुत, फिर उस विचारी दे तां दो कुड़ियां पहला ही ने।
4: हाँ, निंदी नूं तां तुसी तरस नाल बिचारी आखदे हो, उस कली नूं तुसी की कहोगे जिस नूं तुसी खिड़न तो पहला ही मरोड़ सुटिया? तरस सिर्फ निंदी ते ही क्यों कीता जा रहा है, उस मासूम ते क्यों नहीं?
0: ए तां किसे दे हाथ वस नहीं सुरिंदर, पुत वक्त दी हवा ही अजेही चल रही है, नाले असी केड़ा कल्ले सी उत्थे, होर बथेरे सी उत्थे।
4: यही तो दुख वाली गल है मम्मी कि असी दूजियां दी देखा देखी गलत काम करदे हां, जबकि साडा फर्ज ये बनता कि असी गलत काम करन वालियां नू समझाइए, पर असी तो आप भी उन्होंने नाल भीड़ च शामिल हो जाते हैं।
0: मैं तू तो बस बिना रुके बोलन लग जाना सुरिंदर, मैं कला तो कला बंदा की कर सकता है तो की समझा सकता किसी नू, अपनी डेढ़ पा खिचड़ी अड पावे जिन्नी मर्जी रिन्नी जाओ कोई नहीं पुछदा।
4: पर मम्मी, बंदा अपने आंढ गुआंढ आले दुआले नेड़े तेड़े तो दो चार बंदे

0: तब फिर निर्मल, मम्मी ये जिद कर रहे ने।
1: हाँ, वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं, बस टेस्ट करवाने लिए कह रहे ने। ते लड़की होने की हालत च अबोर्शन भी करवाना पड़ेगा।
0: बस बस कर निर्मल, मैं हरगिज नहीं होन देंगा।
1: पर मम्मी यही चाहते ने।
0: इसका मतलब है कि मैनू बगावत करनी पवेगी।
1: पर मम्मी की गल मनन विच नुकसान भी की है।
0: नहीं निर्मल, मैं अपने असूल नहीं छड़ांगा, भावें दुनिया इधर दी उधर हो जावे।
1: तुसी तो जमाने दे उल्ट चलन च ही अपनी बहादुरी समझते हो।
0: जमाने दे वह नाल ही वह जाना तो बुझदली है। मैं पक्का फैसला कर लिया कि यह बच्चा इस दुनिया विच जरूर साह लवेगा।
1: नहीं जनाब, थोड़ा ये नारा तरिया तराया ही रह जाएगा, तो सब कुछ थोड़िया अखां दे सामने होएगा, तो तुसी मुठियां मीच के बैठन तो अलावा कुछ भी नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं।
0: की आख्या? ये अनर्थ मेरिया अखां दे सामने होवेगा तो मैं चुपचाप सब सहन कर लूंगा।
1: शायद मैं यही आख्या।
0: अफसोस निर्मल, तू अज तक मैनू समझ नहीं सकी, नहीं तो शायद तू इंज ना कहती।
1: नहीं, मैं उच्चे आदर्शों वाले भाषणों नू जिंदगी दिया तलख हकीकात दे समानांतर रख के वेख रही हूँ।
0: ते इंज वेखदी होई असमानतावां च रुल गई है।
1: रुलिया कौन है, ये तो वक्त ही दसेगा।
0: एदा मतलब है कि तुसी यानी तू ते मम्मी मिल के मेरे नाल प्रकाश दी तरह धोखा करन दी साजिश करी बैठे हो।
1: प्रकाश नाल धोखा? मैं समझी नहीं।
0: हाँ, ऐसे गल नू लैके उना दे घर च हर रोज तकरार हुंदी है, ते लगदा है ए सिलसिला साडे घर च भी शुरू होण वाला है।
1: शुरू होण वाला नहीं, सगो इंज कहो कि शुरू हो चुके है। जो मम्मी चाहते ने वह तुसी नहीं चाहते, जो तुसी चाहते हो वह मम्मी नहीं चाहते,
0: ते जो मम्मी चाहते ने वह तू जरूर चाहनी है। इसलिए तुहाडियां वोटां वध ने ते तुसी अपनी गल ते अड़ियां होईयां हो।
1: तुसी बिल्कुल ठीक समझ रहे हो,
0: पर तुसी कुछ भी नहीं समझ रही।
1: ज्यादा समझण समझाण की लोड़ भी नहीं, तुसी तो उंज ही राई का पहाड़ बना रहे हो।
0: हुणे पहाड़ बन के ही रहेगा निर्मल, पहाड़ बन के ही रहेगा।

0: की गल निर्मल, आज के में पई है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? सवेरे तो मैं तेरू चंगी पली छड़ के गया सी। मम्मी कितने ने?
1: मम्मी तो गुआंढियां दे गए ने।
0: पर तेनु की होया?
1: कुछ खास नहीं, एवं सिर चकरा रहा सी ते मैं आराम करन ले लेट गई।
0: तेनु एकदम चक्कर आने के में शुरू हो गए? चल किसे डॉक्टर तो दवाई ले आने।
1: नहीं, ओ कहिंदे ने ना कि एक झूठ नूं लुकाउण लई होर बहुत झूठ बोलने पैंदे ने, पर मैं अजिहा नहीं कर सकती। इसलिए चाहुंदी हां कि तुहानूं सच दस दियां।
0: सच की मतलब है? आखिर मामला की है?
1: मैं अबॉर्शन करवा लिया।
0: उफ निर्बल, ए तू की कीता है? तू मेरे नाल बहुत बड़ी ज्यादती

0: अच्छी गल, बड़ी जल्दी आ गए दफ्तर तो। तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है, आज जरा जल्दी छुट्टी कर ली सी। निर्मल
0: दसो की कहन लगे सी, चुप क्यों हो गए?
1: मैं सोचता निर्मल,
0: हाँ दसो की सोचते हो?
1: कि बंदे दी जिंदगी

ना केवल दैवी शख्सियत ने ना निरी इतिहासक प्रतिभा बल्कि वह इतिहासक प्रतिभा अते दैविक शख्सियत का सुंदर सुमेल ने। पंजाबी लोक तारा च राजा रसालू ते मिर्जा अजय दो नायक ने जिहड़े पंजाबी लोक मानसिकता नू रूपमान करते ने। दोवें नायक बिल्कुल विरोधी स्थितियां चो अपना नायकत्व ग्रहण करते ने। जिथे राजा रसालू का नायकत्व मर्यादा के पालन उपर उसरिया है उत्थे मिर्जे का नायकत्व मर्यादा के भंजन विच उभरता है। राजा रसालू आदि तो अंत तक समाजिक मर्यादावां प्रति निश्चयशील है ते विरोधी तत्तां विरुद्ध संघर्षशील, परंतु मिर्जा अपना नायकत्व स्थिर कीमतों विरुद्ध विद्रोही स्थिति चो प्राप्त करता है। राजा रसालू साडा अहम लोक नायक है, एक प्रकर्मी सूरमा ते मनचला व्यक्ति जिस अंदर अंतां दा दर्द सी, मुहब्बत सी। उस वर्गा धर्मी करमी ते करामाती संसार च होर पैदा ही नहीं होया। बहुपक्षी शख्सियत सदका रॉबिन हुड ते आर्थर वर्गे नायक भी उस सामने फिक्के पै जांदे ने।

0: राजे रसालू बारे कई गाथावां प्रचलित ने। प्राप्त गाथावां ही उसके किरदार दियां वक्खो वक्खरियां दिशावां ने। लूणा ने पूर्ण भगत द्वारा दिता चावल का दाणा नवे चन्नू वेख के खाधा। फलस्वरूप रसालू का जन्म होया। नजूमिया ने कहा है,
1: महाराज जिस घड़ी ये बाल जमया वो घड़ी शुभ नहीं, ये माँ बाप दोहां ते भारू है। इसनू 12 वरे मापियां दे मूँह नहीं लगना चाहिदा, पर ये बालक वड्डा हो के बड़ा भारी सूरमा बनेगा। ये पैरां च चक्कर है महाराज, ये किधरे टिक के नहीं बैठेगा। ये महापुरशां वाले चिन्ह ने, इसलिए ये बाल लोकां दे भले लई मुसीबतां झागदा फिरेगा।
0: रसालू दे जन्म वेले पैदा हुए घोड़ा ते तोता उस दे जीवन साथी बने। भोरे विच भी रसालू इन्हां नाल खेडदिआं वड्डा होया। इत्थे ही रसालू ने तीरअंदाजी, नेजेबाजी, तलवार चलाउणी ते चौपड़ विच महारत पाई। जिस दिन रसालू नूं भोरे पाया, उस दिन जम्मू दी राजकुमारी चंदन देई ने उस नाल विआह दा प्रण कर लिया। रसालू दे राह विच धौलर च बैठी उस नूं उड़ीकदी रही। समय तो पहला ही रसालू ने भोरे की कैद त्याग दिती। रसालू नू वेख चंदन देई ने तरला मारिया।

नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम बिना मैं अवर न कोई, वड़ै पाग गुरमुख हर लेना। ये फरमान मनुख मातर वास्ते है ते उसनू नाम जपण दी हिदायत करदा है, पर प्रभु दे नाम दा जाप वड़े पागा नाल उस दी किरपा सदका ही हुंदा है। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। ए सुखदायक नाम इस दा वासा प्रभु दे प्यारे जना दे हिरदे विच हुंदा है, ताही ता प्रभु प्यारे उस दे नाम दा ही वणज करदे हन, उस दे नाम दा ही उचारण, उस दे नाम दा ही उत्तम व्यापार करदे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, मैं बन जा

राम की, तेरा नाम वखर वापार जी। सरवण करदिया भाई निरंजन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन किया होया ये शब्द है।

0: मैं बनजारन राम की, तेरा नाम वखर वापार जी। इस शब्द का गायन किया सी भाई निरंजन सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पलके उठ हर नाम ते आवै। उदम करे पलके पर भाती, स्नान करे अमृतसर नावै। जो गुरु का सिख है, जो गुरु का निकटवर्ती है, वो प्रभु दा नाम त्योंदा है। वो उस नाम रूपी अमृत दा इश्नान करदा है, ते उसनू सदीवी सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। पर प्रभु दे नाम विच कोई विरले जन ही रते जांदे ने। सुनदे आं हरदेव सिंह कलसी होरां पासों वार्ता, नाम रते सदा सुख होई।
1: इस बचन दी रचना तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी दी पावन रचना तो होई। गुरु जी ने अपने सुंदर शब्दों राही परमेश्वर दे नाम दी व्याख्या नूं ही उजागर कीता है। परमेश्वर हमेशा सच चित आनंद अविनाशी जन्म मरण तो रहत हर वस्तु विच फैलिया होया जुगां जुगांतरां तो एक रस रहण वाला सारे संसार दी उत्पत्ति करन वाला है। जो परमेश्वर दे प्यारे उस परमेश्वर दा नाम सदा अपने स्वासां राही उसनूं हमेशा याद करदे हन उन्हां नूं ही परमात्मा दी अलौकिकता दा पता चलदा है। पर संसार विच अजिहे विरले ही गुरमुख जन हन जो परमेश्वर दा नाम हिरदे राही जपन करके इस मरातवे दी प्राप्ति करदे हन। गुरु अर्जन देव जी पंडित ज्ञानी अते हर एक जिज्ञासु नूं बहुत ही प्यार सहित इस ज्ञान दी सूझी बख्शिश करदे हन। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में शोध है राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। जदों गुरु नानक देव जी दी सिद्धां नाल गोष्ठ होई तां उन्होंने पातशाह नूं कई तरह के सवाल किए तां गुरु नानक देव जी ने अपने उत्तर विच परमेश्वर दे गुणां दे संबंध विच बहुत ही सुंदर शब्दां राहीं सोझी पाई कि परमात्मा जो ब्रह्म है वो सदा सलामत है, अंदर

तुम्हारो प्रीतम तंते रोग खाए। सरवण करदिया भाई दविंदर सिंह सोढ़ी ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ये शब्द।

तज अभिमान अर्चिंत बिरानी, साधे सरन पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम, तंते रोग खए। इस शब्द का गायन कीता सिपाही दविंदर सिंह सोडी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। प्रभु दा नाम अत कल्याणकारी है, सुखां दी सौगात देण वाला है। जदों कोई भी प्राणी प्रभु दा नाम जपदा है तो उसके जन्मां जन्मांतरां दे कीते हुए पापां दा नास हो जांदा है। गफलत दी नींद विच सुत्ता होया मन जागृत अवस्था विच आ जांदा है। फिर सदा उस प्रभु दा नाम लैण वाले वडभागे प्राणी दा मुख लोक ते परलोक विच उजला हुंदा है। हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो, नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटह कमाणे पाप चिराणे, साध संगत मिल मुआ जीजै। सरवण करदे हां बीबी जसमीत कौर होरां वल्लों गायन कीता होया ये शब्द है।

हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा ली जय। मिटह कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मुआ जी जय। इस शब्द गायन की तासी बीबी जसमीत कौर होरा।

इन सतगुर सेव शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर धरिया, हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक, चाहक तत् समत सरे, कवि कल ठक।

छोटत परवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर साध भरिया ते पीवै संत करहै मन मजन पुब जिन्हो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उतार तरे कवि का।

हाथ गोड़ दयाल, हर नाम दृढ़ाया, तिस प्रसाद वस पंच करे, कवि काल ठाकुर

0: संतोख सरोवर बसे अमेरस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे दुरत दुरंतर नासे सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुटे संजम सत संतोख सील स्नाहो म फुटे सतगुर परमान बिदन सिरयो जग जस तोर बजायो गुरु रामदास कल उचरे तै अपै अमर पद पायो।
1: जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ायो नवनिध नाम निदान रिद्ध सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अविनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दड़ायो गुर रामदास कल उचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो।
2: प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुट्टै सतगुर शब्द अथा अमें तारा रस गुट्टै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो अयुनी संभवयो जगत गुरु बचन तरायो अवगत अगोचर पर मन गुरु शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचरै तै जगत उदारन पायो अवगत अगोचर पर

0: जिनको गुर सो प्रसन्न, शब्द लग भव जल तारै, परचो परमान गुर पायो, तिन सके अथो जन्म जग, श्री गुरु शरण भज कल कब, भुगत मुकत सब गुरु लग।
1: सतगुर खेमा तान्या जुग जूत समाने, अनभव निजा नाम टेक जित भगत त्यागाने, गुर नानक अंगत अमर भगत हर संग समाने, एहो राज जो गुरु रामदास तुमहु रस जाने, जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया, सत संतोख समाचार अपरासर भरिया, अकथ कथा अमरापुरी जिस देह सो पावे, एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बनयावे।
2: सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो, तारन तरन खिन मातर जाको दृष्ट तारै, शब्द रिद विचारै काम क्रोध खोवै जियो, जियन सबन दाता अगम ज्ञान विख्याता, एहन स्त्यान तावै पलक ना सोवै जियो, जाको देख दृद्र जावै नाम सो निधान पावै, गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो, सत गुर नाम।

तन मन रत्ता रंग सियान हौं मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना पेटिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिस दा।

चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खाल

नीवा मत उच्ची मत पत दा रखाप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमानियां दे मान नेतानियां दे तान ने ओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिन्हां जिन्हां गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ा प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास। सतगुरु जीओ सर्वत साध संगत नूं अपने दारों घरों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देख हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहेवंद हुवना नानक नाम।